0: फिर से ऑल इज वेल।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: I'm sure एक सच्चे फिल्मची ने गेस कर लिया होगा दैट मैं थ्री इडियट्स के बारे में कुछ तो बोलने वाली हूँ, तभी तो ऑल इज वेल। वैसे फिलहाल तो आमिर खान अपने सुपुत्र बोले तो जुनैद खान की अपकमिंग फिल्म एक दिन के प्रमोशंस में लगे हुए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। एंड इसी सिलसिले के बीच उन्होंने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि यस, थ्री इडियट्स का सीक्वल बन रहा है, उस पे काम चालू है। इनफैक्ट थ्री इडियट्स जहां खत्म हुई थी, इस फिल्म की शुरुआत वहां के 10 साल बाद से होगी, विच इज गोना बी अ रियली ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन। ये मैं नहीं, ये मिस्टर परफेक्शनिस्ट कर रहे हैं, और इन्होंने कह दिया तो बस कह दिया। वैसे लाल सिंह चड्ढा में भी इन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें कही थी और अपने बेटे की अपकमिंग फिल्म एक दिन के लिए भी कह रहे हैं, बट असली जवाब तो समय देता है यार। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है कनिका एंड अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप गानों की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इस हफ्ते के काउंटडाउन में टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का कोलैबोरेशन, द ग्लोबल पंजाबी कोलैबोरेशन। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। देन उसके बाद अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी। आदित्य रिखारी रैविट और कुटले खां का गाना, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों इनक्रेडिबल गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: The magic of Coke Studio Bharat is back. गाने का नाम है ए अजनबी, आदित्य रिखारी की आवाज, रैबिट आवर की प्रोडक्शन अलोंग विद कुटले खान. ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: जितने नए कोक स्टूडियो के गाने आ रहे हैं उनको सुन के लगता है कि यार वही पुरानी वाली बात लेकिन एक नया अंदाज. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. गाना नंबर 9 पर हमने सुना ए अजनबी. ऐसा नहीं होता लाइफ में, कभी कभी कोई इंसान होता है जिसको हम पूरी तरह पाते भी नहीं है लेकिन कम्प्लीटली लूज भी नहीं करते हैं. वो एक बीच का एक स्पेस है जहाँ कोई नाम नहीं है, ना उसे ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते, क्लोजर भी नहीं मिलता. ए अजनबी एग्जैक्टली वही फीलिंग को पकड़ता है. इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, सो कोक स्टूडियो के सारे अंदाज हैं इसमें. एक तरफ कुटले खान, राजस्थान की मिट्टी से निकली हुई आवाज जो सालों से फोक को दुनिया भर में लेकर जा रहे हैं, एंड दूसरी तरफ द पॉप सेंसेशन आदित्य रिखारी. इतना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ कोक स्टूडियो कर सकता है. व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दीज सॉन्ग्स इज कि वो किसी भी एक तरह की साउंड को डोमिनेट नहीं करता है. वो हर आर्टिस्ट को अपना स्पेस देता है उस गाने में एग्जिस्ट करने के लिए, अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करने के लिए. जहाँ कुटले खान की मिट्टी से जुड़ी हुई फोक अंदाज आपको इस गाने में सुनाई देगी, वहीं आदित्य रिखारी की पॉप बॉय एनर्जी एक साथ आपको इस गाने में मिलेगी. एंड जब ये बैलेंस सही बैठता है ना, द सॉन्ग हिट्स एग्जैक्टली इन अ हार्ट. और ऐसे ही गाने हमको याद रह जाते हैं, कुछ ना कुछ टेक अवे फैक्टर रह जाता है ऐसे गानों में. पिछले हफ्ते हमने आपको एक धुन सुनाई थी एंड आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है. एक बार फिर से सुनिए. Lots and lots of right answers. It is Duba Duba by Silk Root. Mohit Chauhan की आवाज है. Intro इतना iconic है कि जैसे आपने music सुना, आपने अब भी गाड़ी में चलते हुए पूरे गाने के बारे में बात कर ली. ना अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मैं आपको एक और गाना सुनाने वाली हूँ. It's a Coke Studio song. पिछले सीजन का है, एक नया इंडी पॉप सितारा है इस गाने में. इस म्यूजिक को सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है. आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन से कोक स्टूडियो गाने का म्यूजिक है. एक छोटा सा हिंट देती हूँ, पिछले ही सीजन का है और इस गाने के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बहुत मकान गिराए हैं, हुस्न के ऊपर प्यार करना सिखाया है. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी. @RJ कनिका पर जल्दी आके बताओ. बैक ऑन द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. करण औजला इक्की का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर फॉर अ रीजन पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: नंबर 8.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: हाँ जी हाँ जी, गुरु रंधावा बड़ी इंटरेस्टिंग वेज में आके वही सेम बात बोल जाते हो आप गाने में। गुरु रंधावा की आवाज पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: कुछ गाने में फुल शोश आप पंक्ति में अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी पूरी अपनी एक ऑडियंस है। दूसरी तरफ एक ऐसी ऑडियंस है जो मेल रोमांस में उस सॉफ्ट एरा को मिस करती है, एंड उस सॉफ्ट एरा के पोस्टर बॉय थे आयुष्मान खुराना। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस शो के जरिए हमने इतने सारे पॉप सॉन्ग्स को चार्ट होते देखा है, लेकिन एक तरह के गाने जो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है वो है लव सॉन्ग्स। नाउ एक तरफ ऐसे गाने हैं जहाँ पे हीरो छाती फाड़ के चांद तारे तोड़ कर ला के प्यार करने की बातें करता है फुल इम्प्रेस मोड में, वहीं दूसरी तरफ देव बीन सॉन्ग जहाँ पे मेल पर्सपेक्टिव बहुत सॉफ्ट है, बहुत रियल है, बहुत ऑनेस्ट है। और उस फेस का सबसे स्ट्रॉन्ग फेस थे आयुष्मान खुराना बैक इन द 2010 एरा। रिसेंटली इंस्टाग्राम पर मेरी पूरी फीड भरी हुई है अबाउट बॉयज सेइंग दैट ब्रिंग बैक द ओजी आयुष्मान खुराना सॉफ्ट बॉय एरा। ये सॉफ्ट बॉय क्या था? ये सॉफ्ट बॉय वो था जो ऐसे वाले गाने गाता था।

0: दिस सॉन्ग वॉज सच अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन. ये आयुष्मान खुराना की डेब्यू फिल्म विक्की डोनर से था, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है, उन्होंने गाया था. एंड उसके बाद ही वॉज ऑन अ बेल्ट giving us pop songs after pop songs like
1: ambara barasya pani mitti di khushbu mitti di khushbu.
0: उनकी आवाज में, उनके गानों में एक ऑनेस्टी थी, एक वल्नरेबिलिटी थी, जिसको लोग सॉफ्ट एरा बोल रहे हैं. थोड़ा सा हेजिटेशन है, एक ऐसा टोन था जहां लड़का लाउड नहीं हो रहा है, छाती नहीं फाड़ रहा है, बस अपना प्यार इजहार कर रहा है. ओवर द टॉप मैस्कुलिनिटी नहीं है, कोई फालतू की परफॉर्मेंस नहीं है. एंड आज 2026 में ज्यादा से ज्यादा सिंगर सॉन्ग राइटर्स उसी ऑनेस्टी को एक्सप्लोर करते हैं. बट आई गेट इट, इंटरनेट हैज बीन आस्किंग फॉर आयुष्मान खुराना. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आयुष्मान खुराना के पीक सॉफ्ट एरा से मेरा सबसे फेवरेट गाना, गाने का नाम है यही हूं मैं. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: मैं खोया तो ढूंढ ना आयो, चुपके से एक ख्वाब जाइयो.

आयुष्मान खुराना की आवाज में दैट वाज यही हूँ मैं, ब्रिंगिंग बैक द सॉफ्ट एरा जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। शायद ये उस फीलिंग को वापस चाहते हैं जहाँ गाना थोड़ा कम परफेक्ट होता है, थोड़ा ज्यादा रियल होता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गुड सॉन्ग। एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आके क्विकली इस इंडी पॉप क्विज को आंसर करो। आयुष्मान खुराना के इस गाने यही हूँ मैं में कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस उनके साथ है, जल्दी जल्दी आके मुझे बताओ। बैक ऑन द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। संजू राठौड़ का नया नवेला गाना बैंगल्स डेब्यू कर रहा है दिस वीक गाना नंबर 6। उसके बाद मिट्टा रोर का गाना शीशा पिछले हफ्ते से 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन ऊपर जम करके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना एनी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 5।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज इन ट्रेडमार्क दिलजीत दोसांझ स्टाइल का गाना। गाने का नाम है डीलर। छह हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके डीलर वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन दिस शो जिसका नाम है गाना इंडी टॉप 10। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ अभी, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाने सजेस्ट करनी है, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। आपको वो दोस्त हमेशा याद रहेगा जिसने कोई ऐसा गाना सुना दिया जो आपको अच्छा लगता है आज तक भी। मैं आपकी वही दोस्त बनना चाहती हूँ। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। ये गाने आपको पता है, आपको याद है, बस आपने अभी रिसेंटली सुने नहीं। लास्ट वीक द सॉन्ग वी फीचर्ड वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है चन्नावे बाय कुणाल गांजावाला। अर्ली 2000s का वो फेज जब इंडी पॉप एंड नॉन फिल्म म्यूजिक अपनी पीक पर था। ये गाना 2004 में रिलीज हुआ था। कुणाल गांजावाला की आवाज में जो उस टाइम ऑलरेडी भीगे होठ तेरे जैसे गानों की वजह से लोगों के रडार पर आ चुकी थी, लेकिन इस गाने का मैजिक ना कुणाल गांजावाला की आवाज में है ना इसके म्यूजिक में है। आई ट्रूली फील दैट जो डुअलिटी है ना इस गाने की, द कंट्रास्ट इन इट्स आइडेंटिटी। अब सरफेस पे ये गाना पॉपी पेपी, एकदम हाई एनर्जी, फुल बीट्स ऐसे कि आप ग्रूव करे बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप रुक के इस गाने के लिरिक्स पे ध्यान देंगे तो सॉन्ग इज एक्चुअली अबाउट लॉन्गिंग। चन्नावे घर आ जा, मतलब वापस आ जाओ, किसी का वेट करने वाली बात है, जब किसी के बिना दिल खाली लगे वैसी वाली बात है इस गाने में। इन शॉर्ट वो मीम याद है आपको, हाउ द सॉन्ग साउंड्स लाइक, बंदा डांस कर रहा होता है, एंड व्हाट द सॉन्ग एक्चुअली मींस, बंदा रो रहा होता है। बट दिस सॉन्ग वॉज सच अ रेजर, कॉलेज फेस्टिवल्स, रियलिटी शोज, हर जगह ये गाना परफॉर्म होता था, एंड आज हम सबकी कलेक्टिव मेमोरी का पार्ट बन चुका है। आज भी कहीं सैटरडे डीजे नाइट में जाओगे, चन्नावे गाना बज जाएगा, एंड आई एम श्योर द रिएक्शन विल बी इनसेन। सबने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। कुणाल गांजावाला की आवाज में द ओजी चन्नावे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड आपको मिलता है। वंदी का नाम है आरजे कनिका, इंस्टाग्राम पर @RJ कनिका। अपना रिपोर्ट कार्ड हमें कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन गानों के रिपोर्ट कार्ड को सुनने में सबको मजा आता है। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ दिस वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का ग्लोबल कोलैबोरेशन रांझा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। Then Aditya Rekhari, Kutle Khan ka A Ajnabi from Coke Studio Bharat on gana number 9. Uske baad Karan Aujla, Ikki ka For a Reason this week on gana number 8. Kina pade tu meri baan, kina sona len. Phir gana number 7 par tha Guru Randhawa ka Vogue. संजू राठौड़ का बैंगल्स ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 6, फिर मिट्टा रोर का शीशा ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ की आवाज में डीलर ऑन गाना नंबर 4। करण औजला इक्की बैक अगेन एज योर बॉयफ्रेंड ऑन गाना नंबर 3। Now it's time for the top 2 songs of the week. Anoop Jain ki awaaz, unki composition, gaane ka naam hai Arz Kiya Hai, a Coke Studio song. 14 hafton se is countdown par barqarar, Arz Kiya Hai is this week on gaana number 2 and the numero uno song of the week. It makes me feel so proud, man. Pichle hafte se 2 position upar jump mara is gaane ne. Gaane ka naam hai Bairan, a Haryanvi song by this collective act called Banjare. Unhi ke lyrics, unhi ki composition, unhi ki awaaz. Bairan is this week on gaana number 1. Ye 2 incredible gaane Arz Kiya Hai by Anoop Jain, Bairan by Banjare on gaana number 1, back to back only on gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 2.

0: Imichi, it's hot.
1: Do tole ki mundri la de, tin tole ka

वेलकम बैक अगेन, क्लब मिर्ची जा रही है दोस्तों। डीजे रिचर्ड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ, एंड दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर। वी हैव अ फैंटास्टिक मैशअप ऑफ वी फाउंड लव एंड रांझन रांझन। फन फैक्ट, रिहाना फाउंड लव इन अ होपलेस प्लेस। वी फाइंड लव नेक्स्ट टू अ पुचका स्टॉल, है ना।

0: Mitchie. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are going to go.

ने कहा मिर्ची और योंतिका डीजे रिचर्ड विथ यू लेट्स हैव द जलवा ऑन द फ्लोर. I wanna go.

वेलकम बैक टू पीप्स क्लब मिर्ची, जा रही है डीजे रिचर्ड मिर्ची और यौन देखा के साथ, दिखाएंगे अपना जलवा, बिकॉज दिस सॉन्ग इज साइंटिफिकली प्रूवन टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस बाय 17%।

वेलकम बैक वंस अगेन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची अयंतिका। जिनी इन अ बॉटल, इफ यू रब अ बॉटल इन माय सिटी बहुत कुछ निकल के आता है। तो चल

Hi, darling. I want to dance with you. Dance. Dance of love.

0: में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो।
1: You are vibing with Oyun Deka and DJ Richard on Club Mirchi. Club

once again, Club Mirchi जा रही है with DJ Richard and Mirchi Oyontika. तो गाना dedicate करते हैं यार. गाने का नाम है दुनिया हसीनों का मेला.

दोस्ती करोगे? आ जाओ यार इंस्टाग्राम फेसबुक पे, माय नेम इज ऑयंतिका AYANTIKA। आज के लड़के आई टेल

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो अंतिका एंड अगला गाना जो है एक डिस्क्लेमर है अनलेस इट्स लव फॉर फूड इश्क कभी करियो ना

Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain The Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो इन द मॉर्निंग्स व्हेन यू वेक अप यू नो मूड नहीं होता है काम करने के लिए बट अगर फेस्टिवल डे होगा कोई उत्सव होगा देन वी वेक अप अर्ली बिकॉज वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि घर में बहुत एक्साइटमेंट होता है नए कपड़े होते हैं खाना होता है प्लान्स होते हैं पूजा पाठ होगा कुछ तो एक्टिविटी होगी गेस्ट आएंगे हम कहीं जाएंगे जो रूटीन होता है वो टूट जाता है आई रियली लव फेस्टिवल्स especially Indian festivals because हर festival में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है and I think that is what really excites me और नया concept होता है you know दिवाली के time हम लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं दशहरे के time हम instruments के बारे में सोचते हैं computer की पूजा करते हैं जब होली होती है तो रंग के बारे में सोचते हैं so many different ideas keep coming so जब उत्सव होता है तो उत्सव इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और भारत उत्सवों का देश है यू नो इतने उत्सव होते हैं रोज रोज कोई ना कोई उत्सव होता है और अलग अलग जगह में अलग अलग उत्सव होते हैं उत्तर भारत में दक्षिण भारत में इतने उत्सव देवी देवताओं के उत्सव होते हैं पेड़ पौधों को लेके उत्सव होता है पशुओं को लेके उत्सव होता है पितरों को मतलब एंसेस्टर्स को लेके भी उत्सव होता है इतने उत्सव होते हैं यू नो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू नो जैसे बाइबल में कहते हैं कि यू नो God created the world in 6 days. On the 7th day, He rested. इसलिए हर हफ्ता एक holiday होता है. In amongst Muslims वो Friday होगा, Jewish लोगों में वो Saturday होता है, Christians में वो Sunday होता है. लेकिन ऐसा weekly holiday का concept Indian religions में नहीं है, Buddhism, Jainism and Hinduism में. यहाँ पे उत्सव कोई भी दिन मनाया जाता है, based on either some event that happened या कोई season variation या you know basically the climate has changed. तो राजा उत्सव डिक्लेयर करता था और हॉलीडे होता था तो देयर इज नो रिदमिक हॉलीडे इट इज इररेगुलर कभी भी आ सकता है कभी भी जा सकता है एक पूरा सीजन होता है जब आप ज्यादा फेस्टिवल्स नहीं करते हो जिसको चातुर्मास कहते हैं रेनी सीजन का सो आई थिंक फेस्टिवल्स आर अ ग्रेट थिंग टू डिस्कस नॉट अ स्पेसिफिक उत्सव बट जनरली उत्सव का मतलब क्या है वॉट डज इट मीन वॉट इज इट्स सिग्निफिकेंस क्यों करते हैं हम लोग वॉट इज इट्स वैल्यू इन आर लाइव सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज वंडरफुल थिंग्स ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो
0: मदन उत्सव और वैलेंटाइन्स डे में क्या है सिमिलैरिटी बताएंगे देवदत्त कीप लिसनिंग

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची.
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची.
2: द देवदत्त पटनायक शो.
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.
0: आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं. आई एम श्योर यू आर थिंकिंग व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल, एंड फेस्टिवल्स आर देयर ऑल द टाइम. कल भी फेस्टिवल्स थे, आज भी फेस्टिवल्स हैं. पहले जमाने में भी फेस्टिवल्स होते थे, अलग अलग फेस्टिवल्स होते थे, और आज भी नए नए फेस्टिवल्स होते हैं. उनका रूप बदलता रहता है. फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने अगर आप कालिदास की कविताएं पढ़ें तो वहां पे मदनोत्सव होता था. मदन मतलब कामदेव, गॉड ऑफ लव, और वी यूज टू सेलिब्रेट द गॉड ऑफ लव. तो मदनोत्सव होता था वसंत उत्सव में, इन स्प्रिंग टाइम. और गणिकाएं नाचती थी. ऑल द गर्ल्स वर इनवाइटेड टू द किंग्स गार्डन. राजा के जो गार्डन था वहाँ पे उनको बुलाया जाता था, वहाँ पे खाना पकता था. दे वुड सिंग एंड डांस एंड प्ले ऑन स्विंग्स, और मजा करते थे. कामदेव की पूजा करते थे कि हमारी जिंदगी में भी प्रेम आ जाए, लव आ जाए. सो इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लव. आजकल हम मदनोत्सव को नहीं मानते हैं, लेकिन वी टॉक अबाउट वैलेंटाइंस डे. ऑफ कोर्स सम पीपल गेट वेरी एंग्री. वैलेंटाइंस डे पाश्चात्य है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. एंड आई कीप सेइंग, अरे ये मॉडर्न वर्जन ऑफ मदनोत्सव ही है, कामदेव की पूजा है. यू नो, होली इज ऑल्सो सेट टू बी रिलेटेड टू मदनोत्सव, वसंतोत्सव. अगर आप जितने भी ओल्ड काव्य पढ़े, संस्कृत काव्य, वहां पे मदनोत्सव के बारे में बहुत बताया गया है. फेस्टिवल ऑफ लव. वी सेलिब्रेट लव. वी शुड ऑलवेज सेलिब्रेट लव. कल भी आज भी. आई थिंक एवरी डे शुड बी मदनोत्सव, नॉट जस्ट ऑन सम डेज. सो एवरी डे वी शुड सेलिब्रेट लव एंड वी शुड हैव अ गुड टाइम. बट इफ यू कांट, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर सेलिब्रेट लव. थिंक अबाउट द पर्सन हु लव्स यू एंड होप दैट यू आर लव्ड इक्वली. ऐसी ही बातें हम डिस्कस करेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो, जहां पे हम वेद पुराण आख्यानों के बारे में डिस्कस करते हैं और उनका रेलेवेंस इन आर डे टू डे लाइफ ढूंढते हैं.
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची.
2: द देवदत्त पटनायक शो.
3: राम कृष्ण के जन्मदिन तो मनाए जाते हैं, पर शिव का क्यों नहीं, बताएंगे देवदत्त. कीप लिसनिंग.

0: तो आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। हर देवी देवता का एक उत्सव होता है और उत्सव के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। सो स्टोरीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन उत्सव। जैसे जब क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लोग, तो हम कहते हैं कि जीसस का जन्म हुआ था, सो दैट इज व्हाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। जब ईस्टर की बात होती है तो लोग कहते हैं कि जीसस रेजरेक्टेड हिमसेल्फ। यू नो, रमजान इज अ फेस्टिविटी व्हेन पीपल आर टॉकिंग अबाउट व्हेन द कुरान वाज बीइंग नरेटेड सो फॉर द फर्स्ट टाइम, और वो मंथ को रमजान कहते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी, समहाउ स्टोरी इज रिलेटेड टू ए फेस्टिवल। कृष्ण जन्म की एक उत्सव होती है, राम जन्म का एक उत्सव होता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा शिव का जन्म के बारे में कोई फेस्टिवल नहीं होता या दुर्गा देवी के जन्म के बारे में, बिकॉज ये स्वयंभू है, ये अनंत है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। उनका कभी जन्म नहीं हुआ है, उनका मरण नहीं हुआ है, दे वर नेवर बॉर्न, दे नेवर डाई, वो अमर हैं, दे आर ऑलवेज देयर। तो वी विल नेवर टॉक अबाउट शिवा बींग बॉर्न, वी विल नेवर टॉक अबाउट देवी बींग बॉर्न और विष्णु बींग बॉर्न, बट वी विल टॉक अबाउट राम का जन्म के बारे में, कृष्ण के जन्म के बारे में। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया कि देखो कैसे कहानियों के माध्यम से एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। ऑफकोर्स शिव की पूजा होती है, शिवरात्रि होता है, शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, तो ये फेस्टिवल किसके लिए होता है? कहते हैं कि उस दिन शिव जी की शादी हुई थी, दैट इज वाई शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। इट इज रिलेटेड टू हिज मैरिज, नॉट टू हिज बर्थ और एनीथिंग। सो अलग अलग स्टोरीज होते हैं। जब हम उत्सवों के बारे में बात करते हैं, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस स्टोरीज विद आवर चिल्ड्रन, विद आवर फ्रेंड्स, कि आज ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स फेस्टिवल्स आर नॉट ऑलवेज रिलीजियस, देयर कैन बी आल्सो सेक्युलर फेस्टिवल्स। जैसे हार्वेस्ट टाइम में जब हार्वेस्ट होता है, तो जैसे लोहड़ी होती है, मकर संक्रांति होता है, दीज आर नॉट रियली रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल्स, क्रॉप साइकिल्स, हार्वेस्ट टाइम, सोइंग द सीड। तो लोग फेस्टिवल्स मनाते थे। जब टैक्स कलेक्शन खत्म हो जाता है तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स, नॉट एवरीथिंग इज रिलीजियस। जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, देयर आर रिलीजियस फेस्टिवल्स, दीज आर पॉलिटिकल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स रिलेटेड टू सेक्युलर आइडियाज लाइक नेशन स्टेट। बर्थडेज आर ऑल्सो नॉट रिलीजियस फेस्टिवल, बट दे आर फेस्टिवल्स। सो ऑन द बर्थडे यू आर सेलिब्रेटेड बाय योर फ्रेंड्स, सो दैट इज ऑल्सो ए उत्सव। ऐसे ही बातें अबाउट फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स एंड सिंबल्स एंड प्रैक्टिसेस हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: द देवदत्त पटनायक शो। आज फेस्टिवल्स में बाजार है या बाजार में फेस्टिवल्स, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहाँ पे हम फेस्टिवल के ऊपर बात कर रहे हैं।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: कॉलिंग देवदत्त
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: नाउ इज द टाइम फॉर क्वेश्चंस, सो कॉल इन, आई एम वेटिंग।
4: हाय देवदत्त, मैं हितेश बोल रहा हूँ। मुझे ये जानना था कि फेस्टिवल्स पर मार्केट ज्यादा हावी होता जा रहा है, ओरिजिनल स्टोरीज तो जैसे गायब ही हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है?
1: थैंक यू हितेश, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फेस्टिवल्स की शुरुआत हमेशा अध्यात्म से शुरू होता है या एग्रीकल्चरल फेस्टिवल से शुरू होता है,

0: कोई इवेंट से शुरू होता है, धीरे धीरे धीरे बाजार उसमें आ जाता है, मार्केट बिकम्स इम्पोर्टेंट, बिकॉज ज्यादातर क्या खाना मिलेगा, क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, क्या पार्टी करेंगे, ये फोकस हो जाता है. ऑल फेस्टिवल्स हैव एन इकोनॉमिक बेसिस. सो फेस्टिवल का पर्पस इज टू स्पेंड मनी एंड क्रिएट एक्सचेंज. आप देखेंगे जहाँ पे तीर्थ यात्रा होता है वहाँ पे मेले भी होते हैं. तीर्थ यात्रा, बाजार और मेला का बहुत क्लोज संबंध है. तो पूजा पाठ के साथ बाजार हमेशा साथ में रहेगा. मंदिरों के बाहर बाजार होता है, चर्च के बाहर बाजार होता है. लोग जब मस्जिद जाते हैं तो बगल में आप देखेंगे फूड स्टॉल्स होंगे, क्योंकि फैमिली जाती है वहाँ पे. सो इट इज़ एन इकोनॉमिक स्पेस, सो वी शुड नॉट रिजेंट इट. ये होता है, इट्स ओके. अभी देखिए ना, जैसे क्रिसमस में ज़्यादातर लोग जीसस क्राइस्ट की बात नहीं करते, सेंटा क्लॉज के बारे में ज़्यादा बात करते हैं. सेंटा क्लॉज तो कम्प्लीटली कमर्शियल है, उसके आध्यात्म ईसाई धर्म के साथ कोई लेना देना है ही नहीं. गिफ्ट्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं हम लोग. थैंक्सगिविंग डे के बारे में हम ज़्यादातर टर्की के बारे में लोग बात करते हैं. अमेरिका में लोग नहीं बात करते कि वो थैंक्सगिविंग है क्या, क्या इतिहास था. सो दिस इज एवरीवेयर, दिस इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना. और ऑफ कोर्स आजकल जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, इज बिकम सो पावरफुल एंड मनी इज बिकम सो पावरफुल दैट वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग बियॉन्ड मनी. वी हैव स्टॉप्ड थिंकिंग. शादी भी संस्कार नहीं रहे, अभी तो थिएटर बन गया है, नाच गाने का थिएटर बन गया है, वेयर हस्बैंड वाइफ इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैरिड आर फोकसिंग ऑन डांसिंग इन फ्रंट ऑफ गेस्ट्स. होता है, समय के साथ सब कुछ बदलता है. वी आर इन अ डिफरेंट टाइम, मे बी वी हैव अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ, बट धीरे धीरे धीरे करके जब लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ में आता है, जब हम अर्थ ढूंढने लगते हैं अपने जीवन में, तो हम सेलिब्रेशंस को छोड़ के उनके पीछे रहस्य जो है उसे ढूंढते हैं. यू कैन टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस एंड शेयर द आइडियाज अबाउट फेस्टिवल जो हम देवदत्त पटनायक शो में डिस्कस करते रहते हैं ऑन मिर्ची, एंड एनकरेज देम टू लिसन टू द शो, सो दे विल रियलाइज कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट सेलिब्रेशंस, इट इज ऑल्सो अबाउट थिंकिंग, विचार, भाव, रस, बहुत चीज होते हैं फेस्टिवल्स में, नॉट जस्ट मनी.
1: इट वॉज रियली हेल्पफुल सर, थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू हितेश.
2: On Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik Show.
4: क्यों बदलती हैं फेस्टिवल्स की डेट्स? क्या है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? बताएंगे देवदत्त. Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची,
1: जहां पे आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, फन फ्रॉलिक फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू।
2: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
3: द देवदत्त पटनायक शो,
2: द देवदत्त पटनायक शो
3: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: तो ज्यादातर अगर आप मंदिर में जाएं तो मंदिरों में रोज एक ना एक फेस्टिवल होता है। बनारस में एक फेमस कहावत है कि 7 दिन में 9 त्योहार होते हैं। सो यू नो वी हैव दिस विच इज द कल्चर of festivals. So most festivals happen on the waxing moon time. Very few festivals take place in the Krishna Paksha or the waning moon, जब the moon is becoming smaller and smaller, अमावास के तरफ जाते हैं। Some of those festivals are जैसे Krishna Janm. Krishna Janm का festival is in Krishna Paksha. Mahashivratri is in Krishna Paksha. और इनफैक्ट हर महीने एक शिवरात्रि होता है, जस्ट बिफोर अमावास के दिन शिवरात्रि होता है। महाशिवरात्रि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिवरात्रि, लेकिन हर महीने एक शिवरात्रि होता है। ट्रेडिशनली शुक्ल पक्ष को ज्यादा वैल्यू दिया गया था और कृष्ण पक्ष को कम वैल्यू दिया जाता है। और वन ऑफ द स्टोरीज इज दैट देवासुर में जब संग्राम हुआ था तो ब्रह्मा ने कहा कि जो शुक्ल पक्ष होगा वो देवताओं के साथ जुड़ा होगा और जो कृष्ण पक्ष होगा वो असुरों के साथ जुड़ा होगा। जब उत्तरायण होता है तो वी मूव फ्रॉम स्प्रिंग टू समर टूवर्ड्स रेन्स। दक्षिणायण में वी मूव फ्रॉम द रेनी सीजन टूवर्ड्स विंटर टूवर्ड्स स्प्रिंग। तो वहां पे भी डिविजन हो गया था कि देवता उत्तरायण में बैठते हैं और असुर दक्षिणायण में बैठते हैं। ऐसे द वर्ल्ड इज बीइंग चर्न्ड, एक मंथन हो रहा है। सो फेस्टिवल्स आर आल्सो रिलेटेड ऑलवेज विद एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स associated with astronomy, मतलब तिथि, phases of the moon, seasons, उत्तरायण दक्षिणायण शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, तारे कहाँ पे हैं, जैसे कुंभ मेला will be associated with the Aquarius constellation, तो stars, planets, seasons, moon, movement of the sun, all of this play a very important role in festivals. इसलिए festivals के date बदलते रहते हैं lunar calendar के हिसाब से। solar calendar के कुछ festivals होते हैं जैसे मकर संक्रांति, वो हमेशा every year January 14th को ही आएगा because it's a solar festival, लेकिन दिवाली दिन will keep shifting because it is a lunar festival. So whenever you discuss festivals, remember to look at the calendar. It is a great way to explain to children calendar, अपने दोस्तों के साथ कि नेचर में क्या हो रहा है, what is happening to the sun, what is happening to the moon, what is happening to the stars. Our festivals teach us about astronomy. तो अगर स्कूल में नहीं पढ़े हो तो at least festival के टाइम पे तो सीखो, and these are the kind of things that you must grab from the Devdutt Patnaik show on Mirchi. Share it with your friends, show off with your friends and encourage them to listen to the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
2: The Devdutt on Radio Mirchi.
3: The Devdutt Patnaik show.
4: Kiski hai Diwali? Ram ki, Krishna ki ya Lakshmi ki? Kyun hai controversy? Batayenge Devdutt. Keep listening.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम उत्सवों के बारे में बात कर रहे हैं। भारत उत्सवों का देश है। वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स, वेदर इट इज हिंदू फेस्टिवल्स, बुद्धिस्ट फेस्टिवल, जैन फेस्टिवल, क्रिश्चियन फेस्टिवल, सिख फेस्टिवल्स, मुस्लिम फेस्टिवल्स, सेक्युलर फेस्टिवल्स, एथियस्ट फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल, हमको बहाना चाहिए फॉर पार्टिंग। और फेस्टिवल्स हमारा सांस्कृतिक पार्टी होता है। बट यू नो नाउडेज ऑफकोर्स सबको कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है, सो नाउ देर आर कॉन्ट्रोवर्सीज अबाउट ये फेस्टिवल किसके लिए मनाया जाता है। सो आई ऑलवेज गेट दिस क्वेश्चन। दिवाली के टाइम में एक स्टोरी है। अगर आप बोले दिवाली हम क्यों मनाते हैं, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, तो लोग कहेंगे कि लक्ष्मी के लिए हम मनाते हैं दिवाली, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन होता है दिवाली के दिन पे, एंड लक्ष्मी आ रही है इसलिए हम दीप जलाते हैं ताकि वो हमारे घर आए। लिए लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये राम जी ने अयोध्या आए थे इसलिए हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ राम, इट इज नथिंग टू डू विथ लक्ष्मी, और क्योंकि राम आ रहे हैं उनके साथ लक्ष्मी आ रही है। तो राम भक्त लोग होंगे वो बोलेंगे अलग आइडिया, जो लक्ष्मी भक्त हैं, जो वणिक समाज है, द ट्रेडर्स विल से नहीं नहीं लक्ष्मी की पूजा है। और एक ग्रुप आ जाता है श्री कृष्ण वाले, बोलेंगे कि नहीं नहीं, यहाँ नरक चतुर्दशी होता है तो नरकासुर को श्री कृष्ण ने वध किया था इसलिए हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सच क्या है बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बलि प्रतिपाद होता है, मतलब यहाँ पे ऑन दिस डे वामन ने बाली को जमीन पाताल लोक में भेज दिया था, तो मे बी दैट इज द रियल स्टोरी। तो इतने स्टोरीज में भी मेरा ये विश्वास है कि दिवाली फेस्टिवल सबको इतना पसंद है तो अपने फेवरेट गॉड की स्टोरी उन्होंने थोप दी, एंड वी ऑल बिलीव इट। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? जितने स्टोरीज उतना मजा। Why do we want एक ही स्टोरी होना चाहिए? हमारा देश, we are a diverse country, विभिन्नवाद वाला देश है, तो जिसे राम की स्टोरी सुनना है उन्हें राम की स्टोरी सुनने दीजिए, जिनको कृष्ण की स्टोरी सुनना है उन्हें कृष्ण की स्टोरी सुनना है, जिनको विष्णु की स्टोरी सुनना है वो विष्णु के बारे में सुनेंगे, जिसको लक्ष्मी के बारे में सुनना है वो लक्ष्मी के बारे में सुनेंगे। भाई बहन कहेंगे कि नहीं भाई दूज, दिवाली इज ओनली अबाउट भाई दूज। सो यू नो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट अ फेस्टिवल, एंड आई थिंक वी शुड स्टे अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्सीज, वी शुड एंजॉय द स्टोरीज, फोकस ऑन द पॉजिटिव, स्टे अवे फ्रॉम दीज नेगेटिव। फेस्टिवल इज अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, मांगल्य, घर में शुभ आना चाहिए, लाभ आना चाहिए। दीज आर द आइडियाज दैट वी विल डिस्कस ऑन द देवदत्त पटनायक शो। वी कीप टेलिंग यू स्टोरीज हमारे संस्कृति के बारे में, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चर, सो दैट यू कैन शो ऑफ विद योर फ्रेंड्स अबाउट हाउ मच यू नो अबाउट इंडियन कल्चर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, पिक अप द फोन एंड आस्क। मैं आपके क्वेश्चंस के लिए वेट कर रहा हूं, एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू आंसर, सो आई एम वेटिंग।
1: ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: दिवाली पर पटाखे जलाना सही या गलत, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: हेलो देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi.
3: Hi, मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पॉलिटिकल गेम्स दैट आर बीइंग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वी डोंट वांट टू डिस्कस दिस जाति, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माई सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है। जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यार, हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, शो अभी खत्म होने वाला है। और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज अ गॉड हू इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी के वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते हैं। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdattonmirchi devdattonmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: On Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik Show. The views expressed in the Devdutt Patnaik Show are the hosts alone, not the channels.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर गाना जो चार्ट्स पे आता है वहां रहने का हक नहीं कमाता। कुछ गाने आते हैं शोर के साथ और कुछ गाने आते हैं सच के साथ। इस हफ्ते दोनों हैं। ये है द मिर्ची टॉप 20 और मैं हूं इसका होस्ट सुरेन सुंदरम। एंड इस हफ्ते का काउंटडाउन कम एक कॉन्वर्सेशन ज्यादा है, प्यार के बारे में, बेवफाई के बारे में, पहली बार के बारे में, और उस बार के बारे में जो पहली बार जैसा कभी नहीं होता। कुछ सवाल हैं इस हफ्ते जो मैं खुद से पूछ रहा था और आज आपसे पूछना चाहता हूं। क्या पुराने प्यार वाला गाना अब भी बनाना पॉसिबल है? क्या कोई फ्रेंचाइज दोबारा वो मैजिक छू सकती है जो पहली बार में हुआ था? और क्या बॉलीवुड 2026 में भी वही कहानियां सुना रहा है जो 20 साल पहले सुना रहा था? जवाब इस शो में है। लेट्स स्टार्ट विद गाना नंबर 20।
3: नंबर
2: 20 भूत बंगला का ओ सुंदरी, दूसरा हफ्ता एंड ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब कुछ गाने ऐसे ही करते हैं लेकिन जो आगे है वो अलग है। धुरंधर की दुनिया से दो गाने बैक टू बैक, पहले जाइए सजना ये डेब्यू कर रहा है लेकिन ये गाना आप पहले से जानते हैं, हर एक बोल हर एक सुर। और फिर इश्क जलाकर रणवीर सिंह का एंट्री सॉन्ग, अलग ही आग है।
4: नंबर 19।

0: इश्क चलाकर, याद है आपको? एक डायरेक्टर ने लिटरली ऐसा ही कुछ किया था, 2006 में इश्क को जला दिया था, पूरे देश के इश्क को, विद इस फिल्म कभी अलविदा ना कहना। करण जौहर, जिन्होंने हमें राहुल और अंजलि दिए, अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार करना सिखाया, शैंडलियर वाला प्यार दिया, उसी करण ने एक दिन डिसाइड किया कि वो कहानी सुनाना चाहते हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता था। दो शादीशुदा लोग, गलत इंसान से शादी, और एक दूसरे में सही इंसान को ढूंढते हुए। इंडिया रेडी नहीं था, लेकिन करण ने खुद एक बात कही थी।
1: कितने लोग हैं, कितने ऐसे सारे रिश्ते, कितने ऐसे पीपल हु वेंचर इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विदाउट गिविंग इट अ थॉट, रियली विदाउट रियली सिटिंग एंड थिंकिंग इज ही द राइट पर्सन, इज शी द राइट पर्सन। कभी कभी पेरेंटल प्रेशर की वजह से हम शादी कर लेते हैं, कभी फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, कभी सोशल प्रेशर्स होते हैं, कभी प्रेशर औरत का कभी होता है कि आई एम 30-32 एंड आई एम नॉट मैरिड एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन एंड दे सकम्ब टू दिस इंस्टीट्यूशन।
0: ये 2006 में बोला था करण ने, लेकिन ये 2026 में भी उतना ही सच लगता है, इनफैक्ट शायद ज्यादा। तो अब कैंक वापस आ रही है वेब सीरीज के रूप में, और ये वही कहानी होगी, लेकिन हम अलग होंगे। ओटीटी ने हमें मॉरली कॉम्प्लेक्स दुनिया दिखा दी है, हमने सब देख लिया है, सब एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन देखना क्या हम इस बार देव और माया के साथ महसूस करेंगे या फिर से उन्हें जज करेंगे। इवॉल्व होना और डिसेंसिटाइज्ड होना, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। इस सवाल का जवाब शायद वो वेब सीरीज देगी। तब तक माय पिक ऑफ द वीक वही गाना है जो उस फिल्म की तरह था, अनकंफर्टेबल, ब्यूटीफुल और बिल्कुल सच। सोनू निगम एट हिज मोस्ट ब्रिलियंट बेस्ट, कभी अलविदा ना कहना, बाय शंकर एहसान लॉय एंड जावेद साहब। पिक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17 ख्वाब

0: ख्वाब देखूं और एक छोटा सा हेड्स अप अभी से दे देता हूं, आमिर खान के अराउंड कुछ अनएक्सपेक्टेड आने वाला है अगले कुछ हफ्तों में। जो आपने उनका अब तक एक साइड देखा है उससे काफी अलग, बहुत अलग। बट राइट नाउ बात करते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसको एक लेबल में बांधना मुश्किल है। द नेम इज दिलजीत दोसांझ। ऑन पेपर ही इज एन एक्टर, लेकिन असली पहचान है ऑफ बीइंग अ सिंगर। एक्टिंग उनके लिए प्लान नहीं था, वो एक बाय प्रोडक्ट था, और वही बाय प्रोडक्ट आज एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। पंजाब के बाहर, इंडिया के बाहर कॉन्सर्ट्स आर हाउसफुल, टूर्स आर सोल्ड आउट, और उनकी हर चीज, चाहे म्यूजिक हो या फिर उनका व्लॉग, यार लोग कनेक्ट कर जाते हैं। अब दिलजीत अटेंशन के पीछे नहीं भागता, अटेंशन उनके पीछे भागता है। और फिर आते हैं इम्तियाज अली, जिनका अपना एक खुद का सिनेमैटिक रिदम है। दोनों ने पहले एक साथ काम किया था इन अमर सिंह चमकीला, और अब दोनों वापस आ रहे हैं विद द फिल्म मैं वापस आऊंगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। इम्तियाज कहते हैं उन्हें दिलजीत का सिंगर वाला साइड उतना नहीं पता था, लेकिन एक्टर दिलजीत, well you gotta hear this।
1: मुझे दिलजीत के बारे में उतना पता नहीं था पहले, इन द वे दैट मैं, मुझे लगता था एक्टर बड़ा अच्छा है। मैं उनसे मिला तो उन्होंने एक गाना गाया था हमारी पिक्चर में, रौला पै जान दे, सो तब मैं मिला था। बट ही इज अ वेरी एक्सेप्शनल पर्सन, मतलब वो किसी एक्टर की तरह नहीं है, दूसरे किसी एक्टर की तरह। उसका सोचना, उसका उसकी हरकतें, द वे ही इज, बहुत सादा प्लेन रियल आदमी हो, बट ही इज बहुत मजा आया उनके साथ, खास करके इस बार में कि ना उनको ना पूरी, अगर कोई सेंटेंस बोले ना खत्म करने की जरूरत नहीं, वो समझ जाता है और वो आ जाता है उस सुर पे। तो बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग एन आर्टिस्ट, और उसकी समझ बहुत तेज है, उसके माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट होंगे मेरे ख्याल से।
0: ये चीज अलग होती है, कुछ लोग सिर्फ परफॉर्म करते हैं और कुछ लोग समझ के परफॉर्म करते हैं। दिलजीत दूसरी कैटेगरी में आते हैं, और जब ये इंस्टिंक्ट मिलता है ए आर रहमान के म्यूजिक और इरशाद कामिल के लिरिक्स के साथ, तो गाना सिर्फ सुनाई नहीं देता, अंदर उतर जाता है। ये रहा क्या कमाल है फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, हियर ऑन नंबर 16।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 14।

तो ये था रूप दी रानी, 90s सॉन्ग एक नई पैकेजिंग में फ्रॉम द फिल्म पति पत्नी और वो दो, स्टारिंग आयुष्मान खुराना द पति, वामिका गब्बी हु आई एम गेसिंग इज द पत्नी, एंड रकुलप्रीत सिंह एंड सारा अली खान हु आई थिंक आर द वो दो। तो टोटल तीन लेडीज हैं, एक हीरो है, सब साथ में नाच रहे हैं, सब काफी खुश हैं एंड सब कुछ ग्लॉसी है। वाओ, इट्स मी सुरेन। एंड बॉलीवुड का एक पुराना गिफ्ट है हमारे लिए कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें बहुत सिंपल पैकेजिंग में दे देता है, चाहे वो प्यार हो, बेवफाई हो, दो दो अफेयर्स हो, और फिर भी इन सब के बीच में एक आइटम नंबर हमें जरूर मिल जाता है, क्योंकि अगर वेट अच्छी हो तो सवाल कौन करेगा। Well, I spoke about कभी अलविदा ना कहना, right? उसी subject पे, एक ही थी, गलत रिश्ते, गलत choices, लेकिन वहाँ consequence था, दर्द था, discomfort था, लोग cinema hall से उठ के चले गए थे, और यहाँ सब उठ के नाच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर फिल्म को सीरियस होना चाहिए, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है एंड हमेशा रहेगा, लेकिन कभी कभी जब वही कहानी, वही सब्जेक्ट, वही सिचुएशन सिर्फ एक शाइनी रैपर में आ जाती है तो एक सेकंड रुकने का मन करता है, पूछना पड़ता है कि क्या हम सच में इवॉल्व हुए हैं या सिर्फ कंफर्टेबल हो गए हैं। खैर, बॉलीवुड का ये चक्कर खत्म नहीं होगा, दैट आई प्रॉमिस। तो एक और ग्लॉसी लव ट्राइंगल, और इज इट समथिंग टोटली डिफरेंट, रूमर्स तो यही कह रहे हैं, बट ये शायद गाना ज्यादा स्टाइल के साथ है। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सैनन, दिस इज कॉकटेल 2 एंड दिस इज अरिजीत विद जब तलक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: नंबर 12
2: ना दे दिल पर देती मुंह तन्नत दारूना

ये आवाज जो अभी सुनी आपने फहीम अब्दुल्ला की आवारा अंगारा में, वो इस हफ्ते नंबर 11 पे है। लेकिन ये वही आवाज है, इसने एक और कहानी सुनाई थी हमें, एक अलग दुनिया बनाई थी, क्रिश और वानी की दुनिया, सैयारा की दुनिया। माई नेम इज सुरेन सुंदरम एंड मोहित सूरी, आन पांडे, अनित पद्दा और मिथुन, ये सब एक बार फिर साथ आ रहे हैं एक नई रोमांटिक फिल्म के लिए। और ऑनेस्टली एक्साइटमेंट तो है, लेकिन एक हिस्सा है दिल का जो थोड़ा डर रहा है, क्योंकि सैयारा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक पहली बार था आहान और अनीत के लिए, पहली बार हम सबके लिए, पहली बार। और उस पहली बार का जो शौक होता है ना, जो बटरफ्लाइज होते हैं यार, वो कोरियोग्राफ नहीं हो सकते, वो प्लान नहीं होते, वो बस हो जाते हैं। पहला प्यार दोबारा नहीं होता, फील तो होती है, लेकिन वो वाली फील वो सिर्फ एक बार मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नई फिल्म अच्छी नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूं कि शायद प्रॉब्लम फिल्म में नहीं होगी, शायद प्रॉब्लम हम में होगी कि हम सैयारा को इतना प्यार कर चुके हैं कि जो भी अब आएगा उसे देखने से पहले ही कसौटी पे रख दिया जाएगा। और ये फेयर नहीं है, ना फिल्म के साथ ना अपने साथ। तो जाओ एक्साइटेड रहो, लेकिन थोड़ा सा ओपन रहना। और जब तक वो नई कहानी आए, इस कहानी का वो एक गाना जो मेरे दिल के एक खास कोने में है, जो सैयारा के बाद भी, शायद सैयारा से भी ज्यादा अंदर तक उतरता है, यह है मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक, जुबिन नौटियाल, बर्बाद। स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: ये जो अभी सुना आपने, वाव, हाड़ी संधु, किरण बाजवा, फुल पंजाबी स्वैग, डेब्यू नंबर 10 इस हफ्ते फ्रॉम वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है, डायरेक्टेड बाय वरुण डैड, द कॉमेडी किंग डेविड धवन। सच बताओ, तौबा तौबा की याद आई ना, वही विकी कौशल वाला गाना, वही एनर्जी, वही डीएनए। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। वरुण धवन, डेविड धवन के बेटे, बॉलीवुड के कोट अनकोट नेपोटिज्म पोस्टर बॉय, सिवाय एक चीज के, डेविड धवन सर को पता ही नहीं था कि वरुण एक्टर बनेंगे, विच इज वाई दिस एंट अ नेपोटिज्म स्टोरी एंड विच इज वाई आई लव वरुण। देखो, इस इंडस्ट्री में बाप रास्ता साफ करता है, कारपेट बिछाता है, दरवाजा खोलता है, एंड डेविड धवन जी ने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि उनके घर में दरवाजा ही बंद था, एंड वरुण ने खिड़की से छलांग लगाई।
1: They were talked about films, huh? All of a sudden, ये करण जोहर के बाद चला गया। I want to assist you. So that's how that picture he did now with mine was he went there shooting there and अचानक क्या होता है, करण comes home. He said, David, I want to introduce him. I said, very good, yeah. Then photo session in the hua. He and Siddharth, they looked young and youthful, very good. And how the film started, some days he used to be very upset also, used to come. I said, listen, my son, you're damn good. Your confidence is something else. Just remember one thing. Kandhe pe pair rakho, kood ja. Darna nahi, yeh nahi, kood ja, ho gaya, main kar diya. I remember when the film released, Amit ji, Jaya ji ka message hai, lambi race ka ghoda hai.
0: लंबी रेस का घोड़ा, बच्चन साहब ने कहा रिलीज के दिन एक बाप को उनके बेटे के बारे में। ये इन दोनों की चौथी फिल्म है, लेकिन ये जो रास्ता है अपने डैड के साथ काम करने का रास्ता, वो वरुण ने खुद बनाया है। नंबर 9 पे जो गाना है, इट्स गॉट अ कनेक्शन, चांद मेरा दिल, वो भी करण जौहर की फिल्म है, प्रोड्यूसर के रूप में वही करण जिन्होंने पहले दिन दरवाजा खोला था वरुण के लिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं इंडस्ट्री में भी और जिंदगी में भी, जो शुरुआत से आखिर तक साथ रहते हैं। यह है गाना नंबर 9, चांद मेरा दिल, बाय फहीम अब्दुल्ला। नंबर 9।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7

0: मैं और तू किसी एक फिल्म का गाना नहीं लगता, लगता है जैसे कोई फीलिंग थी जिसको फाइनली अल्फाज मिल गए। धुरंधर 2 का पूरा एल्बम कुछ वैसा ही है, फिल्म भी म्यूजिक भी दोनों साथ हाथ थाम के चल रहे हैं। आई एम सुरेन एंड सच ये है कि ये केमिस्ट्री हमेशा नहीं मिलती, कभी कभी म्यूजिक इतना बड़ा हो जाता है कि फिल्म उसके साये में छुप जाती है। 2013 आशिकी 2, फिल्म डीसेंट थी, इट वॉज वॉर्म, इट वॉज फील गुड, लेकिन वो गाने वो किसी और ही मिट्टी के बने थे। मिथुन ने एक बेट लगाई थी पूरे इंडस्ट्री के खिलाफ, सिंप्लिसिटी पे, सिंसियरिटी पे बेट। जब सब अब बीट गानों के पीछे भाग रहे थे, मिथुन खामोश खड़े रहे।
1: हमारे इंडस्ट्री में हर प्रोजेक्ट में प्रेशर ही प्रेशर होता है, क्योंकि हर कोई हिस्ट्री बनाना चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स टू डू समथिंग हिस्टोरिक। कोई भी ये सोच के नहीं आता कि चलो एक मीडियोकर फिल्म बनाते हैं। और मैं उस प्रेशर से अपने आप को कभी नेगेटिव तरीके से नहीं लेता हूँ, मैं उसको इसी तरीके से लेता हूँ कि लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं और उनकी उम्मीदों पर मुझे खरा उतरना है। बहुत सारे ऐसे स्लो सॉन्ग्स हैं जिन्होंने बहुत गहरा असर किया है आवाम के ऊपर, तो फिर आज भी क्यों नहीं, क्योंकि आज भी लोग वही है, आज भी इंसान दाल रोटी खाता, तो फिर आज वो ऐसे गाने क्यों नहीं सुनेगा। खाली यह है कि वो सही तरीके से पेश किए जाए और उसमें सिंसियरिटी हो। तो मैं इस रास्ते को मैंने इख्तियार किया और मैंने ठाना कि मैं इसी रास्ते पर चलूंगा। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मिथुन तुम अब थोड़ा से अपबीट सॉन्ग्स करो और ये, और मुझे उनके खिलाफ नहीं हूं मैं, लेकिन उसके पहले मैं ये प्रूव करना चाहता था, मैं ये दिखाना चाहता था कि ये म्यूजिक अपने आप में सादगी से भी आप जो है आवाम को प्रभावित कर सकते हैं, और तुम ही उन्हें उस बात को सिद्ध कर दिया।
0: सोचो कब सुना था आपने तुम ही हो पहली बार, साथ कौन था, क्या आप अकेले थे? खाने का काम ही यही होता है, वो आपकी पर्सनल हिस्ट्री में घुस जाता है बिना आपसे पूछे। फिल्म स्क्रीन्स पर आई और स्क्रीन से उतर भी गई, लेकिन वो गाने वो आज भी चल रहे हैं, किसी के ईयरफोन्स में, किसी के दिल में उनकी आवाज बनकर। 13 years, ये मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, अभी भी फील्स लाइक यू आर हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम।
2: टॉप 20 रिवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. नंबर 5.

गहरा हुआ 5 महीने एंड अब भी टॉप 5 में। और सुनो, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि कुछ गाने होते हैं जो हिट होते हैं और कुछ गाने होते हैं जो हमारे कण कण में घुस जाते हैं परमानेंटली। फर्क बस यही होता है दैट द सिंगिंग कॉम्पोजिशन एंड सबसे जरूरी द लिरिक्स, तीनों एक साथ एक ही वक्त में बिल्कुल सही जगह पर होते हैं। जैसे एक और गाना विच आई कैन रिमेम्बर फ्रॉम रॉकस्टार।

0: मोहित चौहान, एआर रहमान, निशात कामिल, दी एंटायर रॉकस्टार एल्बम, तीनों फायरिंग साइमल्टेनियसली। एक भी चीज ज्यादा नहीं थी, एक भी चीज कम नहीं थी। एक और गाना ले लीजिए।
1: तू है

0: अरिजीत, सचिन जिगर, वायु, ना कोई शोर ना कोई दिखावा, बस बिल्कुल सही। और आज भी एक गाना सबके जहन में घूम रहा है।
1: नंबर 4।

9 महीने एंड अब भी टॉप 5 में, इस हफ्ते नंबर 4 पर। ये गाने अडल्टरेटेड नहीं है, दीज आर प्योर सॉन्ग्स, और इसलिए ये रहते हैं हमारे अंदर। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है कि दो जायंट्स एक साथ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह एंड प्रीतम दा, दोनों अपने जॉनर के सबसे बड़े नाम है, और गाना वो अच्छा होता है, चार्ट्स पर भी होता है, इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर भी बन जाता है बिकॉज इट्स 4 प्लेसेस अप। लेकिन क्या ये गाना 9 महीने बाद टॉप 5 में रहेगा? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ गाने मॉन्यूमेंट्स होते हैं और कुछ गाने बस एक खूबसूरत मोमेंट होते हैं। ये है इस हफ्ते का हाईएस्ट गेनर, अप 4 प्लेसेस, अरिजीत सिंह विद निकिता गांधी, म्यूजिक बाय प्रीतम, एंड लिखा है कुमार भाई ने। तू ही दिसदा फ्रॉम भूत बंगला। नंबर 3।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर टू

Ari Ari, and we might be getting more of SP Chaudhary Aslam. It's me, Suren Sundaram, and Sanjay Dutt ek baar phir se hain in the spotlight. Interesting baat ye hai, ye sirf ek comeback nahi lagta, ye ek direction lagta hai. कुछ दिन पहले संजू बाबा ने बल्लू की वापसी अनाउंस कर दी, द सीक्वल टू खलनायक. और तब एक चीज क्लिक कर गई, ये पहली बार नहीं हो रहा है. गदर एक प्रेम कथा वापस आती है, खूब पैसा कमाती है. बॉर्डर फिर से एक्टिवेट होती है एंड अगेन खूब पैसा कमाती है. तो सवाल ये नहीं है कि ये कहानियां पुरानी हो चुकी हैं या नहीं, सवाल ये है कि इन्हें देखते वक्त हम एक्चुअली क्या देख रहे होते हैं. हम शायद फिल्म नहीं देख रहे, शायद वो फीलिंग देख रहे हैं जो पहले कभी अटैच हो चुकी है इन फिल्मों के साथ. क्योंकि जब आप किसी सीक्वल के लिए थिएटर में जाते हैं, आप एक ब्लैंक स्लेट लेकर नहीं जाते, आप अपना वर्जन लेके जाते हैं और फिर फिल्म उसको कंफर्म करती है. इसलिए ये फिल्म्स काम करती हैं, नॉट बिकॉज दे आर शार्पर, बट बिकॉज दे आर ऑलरेडी फेमिलियर. और फेमिलियरिटी एफर्ट नहीं मांगती, सिर्फ रिकॉल मांगती है. शायद इसलिए बॉलीवुड आजकल कहानियां कम लिख रहा है और मेमोरी ट्रिगर ज्यादा कर रहा है. एक थॉट छोड़ के जाता हूं, नया बनाना मुश्किल होता है, लेकिन जो पहले से काम कर चुका है उसे दोबारा बेचना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है. तो आज हम क्या देख रहे हैं, फिल्म्स या अपनी ही पुरानी यादों का अपग्रेडेड वर्जन? Think about that. क्योंकि अब वक्त है इस हफ्ते के नंबर वन गाने का, डोमिनेटिंग द टॉप स्पॉट फॉर 11th टाइम. दिस इज शरारत फ्रॉम धुरंधर बाय जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची. नंबर

0: 11 बार 11 टाइम्स ऑन नंबर 1 मैन शरारत इज रियली स्पेशल, क्योंकि वो गाने जो बार बार वापस आ जाते हैं ना, वो सिर्फ पॉपुलर नहीं होते, वो जरूरी बन जाते हैं. वेल, आई एम डन फॉर दिस एपिसोड. मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20. सो अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज सरेन ओवर एंड आउट.
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट 98.3 मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot.
1: Never been the best, AJ.

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot.

आपको यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सेवा मंडल का मैं बहुत आभारी हूँ।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: ऑडियो और गो रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Yeah. I like the way you move right there.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है कनिका एंड अब बारी है हफ्ते के हॉटेस्ट पॉप गानों की। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। इस हफ्ते के काउंटडाउन में टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गाने हैं। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑल दिस एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10, दिलजीत दोसांझ एंड सिया का कोलैबोरेशन, द ग्लोबल पंजाबी कोलैबोरेशन। दिलजीत दोसांझ एंड सिया का गाना, गाने का नाम है रांझा। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके रांझा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। देन उसके बाद अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, गाने का नाम है ए अजनबी। आदित्य रिखारी रैविट और कुटले खां का गाना, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों इनक्रेडिबल गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: The magic of Coke Studio Bharat is back. गाने का नाम है ए अजनबी. आदित्य रिखारी की आवाज, रैबिटॉर की प्रोडक्शन, अलॉन्ग विद कुटले खान. ए अजनबी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10. गानिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: जितने नए कोक स्टूडियो के गाने आ रहे हैं उनको सुन के लगता है कि यार वही पुरानी वाली बात लेकिन एक नया अंदाज. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. गाना नंबर 9 पर हमने सुना ए अजनबी. ऐसा नहीं होता लाइफ में, कभी कभी कोई इंसान होता है जिसको हम पूरी तरह पाते भी नहीं है लेकिन कंप्लीटली लूज भी नहीं करते हैं. वो एक बीच का एक स्पेस है जहाँ कोई नाम नहीं है, ना उसे ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते, क्लोजर भी नहीं मिलता. ए अजनबी एग्जैक्टली वही फीलिंग को पकड़ता है. इट्स अ कोक स्टूडियो सॉन्ग, सो कोक स्टूडियो के सारे अंदाज हैं इसमें. एक तरफ कुटले खान, राजस्थान की मिट्टी से निकली हुई आवाज जो सालों से फोक को दुनिया भर में लेकर जा रहे हैं, एंड दूसरी तरफ द पॉप सेंसेशन आदित्य रिखारी. इतना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन सिर्फ कोक स्टूडियो कर सकता है. What I absolutely love about these songs is कि वो किसी भी एक तरह की साउंड को डोमिनेट नहीं करता है. वो हर आर्टिस्ट को अपना स्पेस देता है उस गाने में एग्जिस्ट करने के लिए, अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करने के लिए. जहाँ कुटले खान की मिट्टी से जुड़ी हुई फोक अंदाज आपको इस गाने में सुनाई देगी, वहीं आदित्य रिखारी की पॉप बॉय एनर्जी एक साथ आपको इस गाने में मिलेगी. एंड जब ये बैलेंस सही बैठता है ना, द सॉन्ग हिट्स एग्जैक्टली इन अ हार्ट. और ऐसे ही गाने हमको याद रह जाते हैं, कुछ ना कुछ टेक अवे फैक्टर रह जाता है ऐसे गानों में. पिछले हफ्ते हमने आपको एक धुन सुनाई थी एंड आपको गेस करना था ये कौन सा गाना है. एक बार फिर से सुनिए. Lots and lots of right answers. It is Duba Duba by Silk Root. Mohit Chauhan की आवाज है. Intro इतना iconic है कि जैसे आपने music सुना, आपने अब भी गाड़ी में चलते हुए पूरे गाने के बारे में बात कर ली. हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. मैं आपको एक और गाना सुनाने वाली हूँ. It's a Coke Studio song. पिछले सीजन का है. एक नया इंडी पॉप सितारा है इस गाने में. इस म्यूजिक को सुनो और बताओ ये कौन सा गाना है. @RJ कनिका और इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन से कोक स्टूडियो गाने का म्यूजिक है. एक छोटा सा हिंट देती हूँ, पिछले ही सीजन का है और इस गाने के जो आर्टिस्ट है उन्होंने बहुत मकान गिराए हैं, हुस्न के ऊपर प्यार करना सिखाया है. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी. @RJ कनिका पर जल्दी आके बताओ. बैक ऑन द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी. करण औजला इक्की का गाना फ्रॉम पी पॉप कल्चर फॉर अ रीजन पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
2: नंबर 7

0: हाँ जी हाँ जी, गुरु रंधावा बड़े इंटरेस्टिंग वेज में आके वही सेम बात बोल जाते हो आप गाने में। गुरु रंधावा की आवाज पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके गाने का नाम है वोग, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: कुछ गाने में फुल शोश आप पंक्ति में अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी पूरी अपनी एक ऑडियंस है। दूसरी तरफ एक ऐसी ऑडियंस है जो मेल रोमांस में उस सॉफ्ट एरा को मिस करती है, एंड उस सॉफ्ट एरा के पोस्टर बॉय थे आयुष्मान खुराना। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस शो के जरिए हमने इतने सारे पॉप सॉन्ग्स को चार्ट होते देखा है, लेकिन एक तरह के गाने जो हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है वो है लव सॉन्ग्स। नाउ एक तरफ ऐसे गाने हैं जहाँ पे हीरो छाती फाड़ के चांद तारे तोड़ कर लाके प्यार करने की बातें करता है फुल इम्प्रेस मोड में, वहीं दूसरी तरफ देव बीन सॉन्ग्स जहाँ पे मेल पर्सपेक्टिव बहुत सॉफ्ट है, बहुत रियल है, बहुत ऑनेस्ट है। और उस फेज का सबसे स्ट्रॉन्ग फेज थे आयुष्मान खुराना बैक इन द 2010 एरा। रिसेंटली इंस्टाग्राम पर मेरी पूरी फीड भरी हुई है अबाउट बॉयज सेइंग दैट ब्रिंग बैक द ओजी आयुष्मान खुराना सॉफ्ट बॉय एरा। ये सॉफ्ट बॉय क्या था? ये सॉफ्ट बॉय वो था जो ऐसे वाले गाने गाता था।

0: दिस सॉन्ग वॉज सच अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन. ये आयुष्मान खुराना की डेब्यू फिल्म विक्की डोनर से था, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है, उन्होंने ही गाया था. एंड उसके बाद ही वॉज ऑन अ बेल्ट giving us pop songs after pop songs like
1: ambara barasya pani mitti di khushboo
0: उनकी आवाज में, उनके गानों में एक ऑनेस्टी थी, एक वल्नरेबिलिटी थी जिसको लोग सॉफ्ट एरा बोल रहे हैं. थोड़ा सा हेजिटेशन है, एक ऐसा टोन था जहां लड़का लाउड नहीं हो रहा है, छाती नहीं फाड़ रहा है, बस अपना प्यार इजहार कर रहा है. ओवर द टॉप मैस्कुलिनिटी नहीं है, कोई फालतू की परफॉर्मेंस नहीं है. एंड आज 2026 में ज्यादा से ज्यादा सिंगर सॉन्ग राइटर्स उसी ऑनेस्टी को एक्सप्लोर करते हैं. बट आई गेट इट, इंटरनेट हैज बीन आस्किंग फॉर आयुष्मान खुराना. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. आयुष्मान खुराना के पीक सॉफ्ट एरा से मेरा सबसे फेवरेट गाना, गाने का नाम है यही हूं मैं. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: मैं खोया तो ढूंढ ना आयो, चुपके से एक ख्वाब में जाइयो.

आयुष्मान खुराना की आवाज में दैट वाज यही हूँ मैं, ब्रिंगिंग बैक द सॉफ्ट एरा जिसको आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। शायद ये उस फीलिंग को वापस चाहते हैं जहाँ गाना थोड़ा कम परफेक्ट होता है, थोड़ा ज्यादा रियल होता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ गुड सॉन्ग। एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आके क्विकली इंडी पॉप क्विज को आंसर करो। आयुष्मान खुराना के इस गाने यही हूँ मैं कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस उनके साथ है, जल्दी जल्दी आके मुझे बताओ। बैक ऑन द काउंट डाउन, अगले वाले गाने की बारी। संजू राठौड़ का नया नवेला गाना बैंगल्स डेब्यू कर रहा है दिस वीक गाना नंबर 6। उसके बाद मिट्टा रोर का गाना शीशा पिछले हफ्ते से 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन ऊपर जम करके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना एनी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 5।

0: दिलजीत दोसांझ की आवाज इन ट्रेडमार्क दिलजीत दोसांझ स्टाइल का गाना। गाने का नाम है डीलर। 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जंप करके डीलर वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका ऑन दिस शो जिसका नाम है गाना इंडी टॉप 10। इस बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ अभी, फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाने सजेस्ट करने हैं, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली रियली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। आपको वो दोस्त हमेशा याद रहेगा जिसने कोई ऐसा गाना सुना दिया जो आपको अच्छा लगता है आज तक भी। मैं आपकी वही दोस्त बनना चाहती हूँ। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। ये गाने आपको पता है, आपको याद है, बस आपने अभी रिसेंटली सुने नहीं। लास्ट वीक द सॉन्ग वी फीचर्ड वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है चन्नावे बाय कुनाल गांजावाला। अर्ली 2000s का वो फेज जब इंडी पॉप एंड नॉन फिल्म म्यूजिक अपनी पीक पर था। ये गाना 2004 में रिलीज हुआ था। कुनाल गांजावाला की आवाज में जो उस टाइम ऑलरेडी भीगे होठ तेरे जैसे गानों की वजह से लोगों के रडार पर आ चुकी थी, लेकिन इस गाने का मैजिक ना कुनाल गांजावाला की आवाज में है ना इसके म्यूजिक में है। आई ट्रूली फील दैट जो डुअलिटी है ना इस गाने की, द कंट्रास्ट इन इट्स आइडेंटिटी। अब सरफेस पे ये गाना पॉपी पेपी, एकदम हाई एनर्जी, फुल बीट्स ऐसी कि आप ग्रूव करे बिना रह ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप रुक के इस गाने के लिरिक्स पे ध्यान देंगे तो सॉन्ग इज एक्चुअली अबाउट लॉन्गिंग। चन्नावे घर आ जा, मतलब वापस आ जाओ, किसी का वेट करने वाली बात है, जब किसी के बिना दिल खाली लगे वैसी वाली बात है इस गाने में। इन शॉर्ट वो मीम याद है आपको, हाउ द सॉन्ग साउंड्स लाइक, बंदा डांस कर रहा होता है, एंड व्हाट द सॉन्ग एक्चुअली मींस, बंदा रो रहा होता है। बट दिस सॉन्ग वॉज सच अ रेजर, कॉलेज फेस्टिवल्स, रियलिटी शोज, हर जगह ये गाना परफॉर्म होता था, एंड आज हम सबकी कलेक्टिव मेमोरी का पार्ट बन चुका है। आज भी कहीं सैटरडे डीजे नाइट में जाओगे, चन्नावे गाना बज जाएगा, एंड आई एम श्योर द रिएक्शन विल बी इनसेन। सबने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। कुनाल गांजावाला की आवाज में द ओजी चन्नावे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: 2 songs of this week, a quick recap karte hain right from the top. Diljit Dosanjh and Sia ka global collaboration Ranjha was this week on Gana number 10. Then Aditya Rekhari, Kutle Khan ka Ae Ajnabi from Coke Studio Bharat on Gana number 9. उसके बाद करण औजला 21 का फॉर अ रीजन दिस वीक ऑन गाना नंबर 8.
1: कितना पड़े तू मेरी बात, कितना सोना लेना.
0: फिर गाना नंबर 7 पर था गुरु रंधावा का वोग. संजू राठौड़ का बैंगल्स ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 6. फिर मिट्टा रोर का शीशा ऑन गाना नंबर 5.
2: तेरे आगे पीछे लगे सुने तो ना छोरी का हर रंग.
0: दिलजीत दोसांझ की आवाज में डीलर ऑन गाना नंबर 4.
3: जिधर तू पीछे यातनगी ना चोपर जोगी डब दबीना.
0: करण औजला 21 बैक अगेन एज योर बॉयफ्रेंड ऑन गाना नंबर 3. Now it's time for the top 2 songs of the week. Anoop Jain ki awaaz, unki composition, gaane ka naam hai Arz Kiya Hai, a Coke Studio song. 14 hafton se is countdown par barqarar, Arz Kiya Hai is this week on Gana number 2 and the numero uno song of the week. It makes me feel so proud, man. Pichle hafte se 2 position upar jump mara is gaane ne. Gaane ka naam hai Bairan, a Haryanvi song by this collective act called Banjare. Unhi ke lyrics, unhi ki composition, unhi ki awaaz. Bairan is this week on Gana number 1. Ye 2 incredible gaane Arz Kiya Hai by Anoop Jain, Bairan by Banjare on Gana number 1, back to back only on Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.
4: Number 2.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड आपको मिलता है। वंदी का नाम है आरजे कनिका, इंस्टाग्राम पर @RJKanika। अपना रिपोर्ट कार्ड हमें कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन गानों के रिपोर्ट कार्ड को सुनने में सबको मजा आता है। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप

Mitchie. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: हर गाना जो चार्ट्स पे आता है वहां रहने का हक नहीं कमाता. कुछ गाने आते हैं शोर के साथ और कुछ गाने आते हैं सच के साथ. इस हफ्ते दोनों हैं. ये है द मिर्ची टॉप 20 और मैं हूं इसका होस्ट सुरेन सुंदरम. एंड इस हफ्ते का काउंटडाउन कम एक कॉन्वर्सेशन ज्यादा है. प्यार के बारे में, बेवफाई के बारे में, पहली बार के बारे में और उस बार के बारे में जो पहली बार जैसा कभी नहीं होता. कुछ सवाल हैं इस हफ्ते जो मैं खुद से पूछ रहा था और आज आपसे पूछना चाहता हूं. क्या पुराने प्यार वाला गाना अब भी बनाना पॉसिबल है? क्या कोई फ्रेंचाइज दोबारा वो मैजिक छू सकती है जो पहली बार में हुआ था? और क्या बॉलीवुड 2026 में भी वही कहानियां सुना रहा है जो 20 साल पहले सुना

0: आ रहा था। जवाब इस शो में है। लेट्स स्टार्ट विद गाना नंबर 20।
1: नंबर 20।
0: भूत बंगला का ओ सुंदरी, दूसरा हफ्ता एंड ऑलरेडी थोड़ा सा नीचे आ गया है। अब कुछ गाने ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो आगे है वो अलग है। धुरंधर की दुनिया से दो गाने बैक टू बैक। पहले जाइए सजना, ये डेब्यू कर रहा है, लेकिन ये गाना आप पहले से जानते हैं, हर एक बोल हर एक सुर। और फिर इश्क जलाकर, रणवीर सिंह का एंट्री सॉन्ग, अलग ही आग है।
2: नंबर 19।

0: इश्क चलाकर, याद है आपको? एक डायरेक्टर ने लिटरली ऐसा ही कुछ किया था 2006 में, इश्क को जला दिया था, पूरे देश के इश्क को, विद दिस फिल्म कभी अलविदा ना कहना। करण जौहर, जिन्होंने हमें राहुल और अंजलि दिए, अपने माँ बाप से बेइंतहा प्यार करना सिखाया, शैंडलियर वाला प्यार दिया, उसी करण ने एक दिन डिसाइड किया कि वो कहानी सुनाना चाहते हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता था। दो शादीशुदा लोग, गलत इंसान से शादी, और एक दूसरे में सही इंसान को ढूंढते हुए। इंडिया रेडी नहीं था, लेकिन करण ने खुद एक बात कही थी।
1: कितने लोग हैं, कितने ऐसे सारे रिश्ते, कितने ऐसे पीपल हु वेंचर इनटू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज विदाउट गिविंग इट अ थॉट, रियली विदाउट रियली सिटिंग एंड थिंकिंग दैट इज ही द राइट पर्सन, इज शी द राइट पर्सन। कभी कभी पेरेंटल प्रेशर की वजह से हम शादी कर लेते हैं, कभी फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, कभी सोशल प्रेशर्स होते हैं, कभी प्रेशर्स औरत का कभी होता है कि वो आई एम 30-32 एंड आई एम नॉट मैरिड एंड व्हाट्स गोना हैपन एंड दे सकम टू दिस इंस्टीट्यूशन।
0: ये 2006 में बोला था करण ने, लेकिन ये 2026 में भी उतना ही सच लगता है, इनफैक्ट शायद ज्यादा। तो अब कैंक वापस आ रही है वेब सीरीज के रूप में, और ये वही कहानी होगी, लेकिन हम अलग होंगे। ओटीटी ने हमें मॉरली कॉम्प्लेक्स दुनिया दिखा दी है, हमने सब देख लिया है, सब एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन देखना क्या हम इस बार देव और माया के साथ महसूस करेंगे या फिर से उन्हें जज करेंगे। इवॉल्व होना और डिसेंसिटाइज्ड होना, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। इस सवाल का जवाब शायद वो वेब सीरीज देगी। तब तक माय पिक ऑफ द वीक वही गाना है जो उस फिल्म की तरह था, अनकंफर्टेबल, ब्यूटीफुल और बिल्कुल सच। सोनू निगम एट हिज मोस्ट ब्रिलियंट बेस्ट, कभी अलविदा ना कहना, बाय शंकर एहसान लॉय एंड जावेद साहब। पिक ऑफ द वीक।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 17।

0: ख्वाब देखूं और एक छोटा सा हेड्स अप अभी से दे देता हूं, आमिर खान के अराउंड कुछ अनएक्सपेक्टेड आने वाला है अगले कुछ हफ्तों में। जो आपने उनका अब तक एक साइड देखा है उससे काफी अलग, बहुत अलग। बट राइट नाउ बात करते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट की जिसको एक लेबल में बांधना मुश्किल है। द नेम इज दिलजीत दोसांझ। ऑन पेपर ही इज एन एक्टर, लेकिन असली पहचान है ऑफ बीइंग अ सिंगर। एक्टिंग उनके लिए प्लान नहीं था, वो एक बाय प्रोडक्ट था, और वही बाय प्रोडक्ट आज एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। पंजाब के बाहर, इंडिया के बाहर कॉन्सर्ट्स आर हाउसफुल, टूर्स आर सोल्ड आउट, और उनकी हर चीज, चाहे म्यूजिक हो या फिर उनका व्लॉग, यार लोग कनेक्ट कर जाते हैं। अब दिलजीत अटेंशन के पीछे नहीं भागता, अटेंशन उनके पीछे भागता है। और फिर आते हैं इम्तियाज अली, जिनका अपना एक खुद का सिनेमैटिक रिदम है। दोनों ने पहले एक साथ काम किया था इन अमर सिंह चमकीला, और अब दोनों वापस आ रहे हैं विद द फिल्म मैं वापस आऊंगा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। इम्तियाज कहते हैं उन्हें दिलजीत का सिंगर वाला साइड उतना नहीं पता था, लेकिन एक्टर दिलजीत, well you gotta hear this।
1: मुझे दिलजीत के बारे में उतना पता नहीं था पहले, इन द वे दैट मैं, मुझे लगता था एक्टर बड़ा अच्छा है। मैं उनसे मिला तो उन्होंने एक गाना गाया था हमारी पिक्चर में, रौला पै जान दे, सो तब मैं मिला था। बट ही इज अ वेरी एक्सेप्शनल पर्सन, मतलब वो किसी एक्टर की तरह नहीं है, दूसरे किसी एक्टर की तरह। उसका सोचना, उसका उसकी हरकतें, जो वे ही बहुत सादा प्लेन रियल आदमी हो, बट ही इज बहुत मजा आया उनके साथ, खास करके इस बार में कि ना उनको ना पूरी, अगर कोई सेंटेंस बोले ना खत्म करने की जरूरत नहीं, वो समझ जाता है और वो आ जाता है उस सुर पे। तो बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग अ एन आर्टिस्ट, और उसकी समझ बहुत तेज है, उसके माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट होंगे मेरे ख्याल से।
0: ये चीज अलग होती है, कुछ लोग सिर्फ परफॉर्म करते हैं और कुछ लोग समझ के परफॉर्म करते हैं। दिलजीत दूसरी कैटेगरी में आते हैं, और जब ये इंस्टिंक्ट मिलता है एआर रहमान के म्यूजिक और इरशाद कामिल के लिरिक्स के साथ, तो गाना सिर्फ सुनाई नहीं देता, अंदर उतर जाता है। ये रहा क्या कमाल है फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, हियर ऑन नंबर 16।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 14.

तो ये था रूप दी रानी, अ 90s सॉन्ग एक नई पैकेजिंग में फ्रॉम द फिल्म पति पत्नी और वो दो, स्टारिंग आयुष्मान खुराना द पति, वामिका गब्बी हु आई एम गेसिंग इज द पत्नी, एंड रकुलप्रीत सिंह एंड सारा अली खान हु आई थिंक आर द वो दो। तो टोटल तीन लेडीज हैं, एक हीरो है, सब साथ में नाच रहे हैं, सब काफी खुश हैं एंड सब कुछ ग्लॉसी है। वाओ, इट्स मी सुरेन। एंड बॉलीवुड का एक पुराना गिफ्ट है हमारे लिए कि वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें बहुत सिंपल पैकेजिंग में दे देता है, चाहे वो प्यार हो, बेवफाई हो, दो दो अफेयर्स हो, और फिर भी इन सब के बीच में एक आइटम नंबर हमें जरूर मिल जाता है, क्योंकि अगर बेड अच्छी हो तो सवाल कौन करेगा। Well, I spoke about कभी अलविदा ना कहना, right? उसी सब्जेक्ट पे, एक ही थी, गलत रिश्ते, गलत choices, लेकिन वहाँ कॉन्सिक्वेंस था, दर्द था, डिस्कम्फर्ट था, लोग सिनेमा हॉल से उठ के चले गए थे, और यहाँ सब उठ के नाच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर फिल्म को सीरियस होना चाहिए, एंटरटेनमेंट अपनी जगह है एंड हमेशा रहेगा, लेकिन कभी कभी जब वही कहानी, वही सब्जेक्ट, वही सिचुएशन सिर्फ एक शाइनी रैपर में आ जाती है तो एक सेकेंड रुकने का मन करता है, पूछना पड़ता है कि क्या हम सच में इवॉल्व हुए हैं या सिर्फ कंफर्टेबल हो गए हैं। खैर, बॉलीवुड का ये चक्कर खत्म नहीं होगा, दैट आई प्रॉमिस। तो एक और ग्लॉसी लव ट्राइंगल, और इज इट समथिंग टोटली डिफरेंट, रूमर्स तो यही कह रहे हैं, बट ये शायद गाना ज्यादा स्टाइल के साथ है। शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना, कृति सैनन, दिस इज कॉकटेल 2 एंड दिस इज अरिजीत विद जब तलक।

0: ये आवाज जो अभी सुनी आपने फहीम अब्दुल्ला की आवारा अंगारा में, वो इस हफ्ते नंबर 11 पे है। लेकिन ये वही आवाज है, इसने एक और कहानी सुनाई थी हमें, एक अलग दुनिया बनाई थी, कृष और वानी की दुनिया, सैयारा की दुनिया। माई नेम इज सुरेन सुंदरम एंड मोहित सूरी, आन पांडे, अनी पद्दा और मिथुन, ये सब एक बार फिर साथ आ रहे हैं एक नई रोमांटिक फिल्म के लिए। और ऑनेस्टली एक्साइटमेंट तो है, लेकिन एक हिस्सा है दिल का जो थोड़ा डर रहा है, क्योंकि सैयारा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक पहली बार था आहान और अनीत के लिए, पहली बार हम सबके लिए, पहली बार। और उस पहली बार का जो शौक होता है ना, जो बटरफ्लाइज होते हैं यार, वो कोरियोग्राफ नहीं हो सकते, वो प्लान नहीं होते, वो बस हो जाते हैं। पहला प्यार दोबारा नहीं होता, फील तो होती है, लेकिन वो वाली फील वो सिर्फ एक बार मिलती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नई फिल्म अच्छी नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूं कि शायद प्रॉब्लम फिल्म में नहीं होगी, शायद प्रॉब्लम हम में होगी कि हम सैयारा को इतना प्यार कर चुके हैं कि जो भी अब आएगा उसे देखने से पहले ही कसौटी पर रख दिया जाएगा। और ये फेयर नहीं है, ना फिल्म के साथ ना अपने साथ। तो जाओ एक्साइटेड रहो, लेकिन थोड़ा सा ओपन रहना। और जब तक वो नई कहानी आए, इस कहानी का वो एक गाना जो मेरे दिल के एक खास कोने में है, जो सैयारा के बाद भी, शायद सैयारा से भी ज्यादा अंदर तक उतरता है, यह है मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक, जुबिन नौटियाल, बर्बाद।
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।